नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा

0: 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के थे। आतंकवादियों का ये समूह कल दोपहर बाद कृष्णा घाटी सेक्टर के नांगी टकटे इलाके में नियंत्रण रेखा पार करने की फिराक में था, तभी उनका पांव बारूदी सुरंग पर पड़ गया और विस्फोट में 4 आतंकवादियों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर जिला पुलिस बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने कल किस्ताराम थाना क्षेत्र के पालाचलमा गांव के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में पूर्ण नियंत्रण और तलाशी अभियान चलाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। भारत और ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवीनतम घटनाक्रमों और परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। कल नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिव मोहसिन रजाई ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ फोन पर बातचीत की। बैडमिंटन में इस साल WBWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु और पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी आज से आरंभ हो रहे डेनमार्क ओपन में भारतीय अभियान की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. In a social media post, Mr. Shah said, this historic meeting underscores our shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows and cyber threats. He said through decisive coordination, we remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, is an international organization of 7 South Asian and Southeast Asian nations. The BIMSTEC member states are India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. Besides discussing organized crime, combating terrorism, narcotics smuggling, the Home Ministers' meet is expected to take note of disaster and energy security issues. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. In Jammu and Kashmir, 4 terrorists, including a top Lashkar-e-Taiba commander, were killed in a landmine blast along the line of control when they were trying to

0: Don Marliatum, Lapanapor, Nalitum, Karbi, Luncheto, Alun Arjulong Iktanglo, Non Studio Guriapor, Porpai, Nerkep Lingji Dog Doglo, Lassi, Delhi Station Pen, Samachar Prabhat, Lapen, Morning News, Nalitum Asonason Birta Pachetak, Arjulong Ikpo, Lake Akaswani Dipu.
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए

0: विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
1: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन,
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
4: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
5: नालंदा के धौंस ने भारत को अंधकार से भर

0: किया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशी की रिपोर्ट।
3: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भशु और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: PCP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
2: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे। Election Commission launches nationwide outreach drive to ensure no eligible voter is left out of electoral rolls. 4 Lashkar-e-Taiba terrorists killed in landmine blast at LOC in Poonch district of Jammu and Kashmir. India's internet subscriber base crosses 111 crores. And in badminton, Denmark Open 2026 to begin today in Odense. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has appointed governors for 6 states. Mr. O.P. Mathur, who is currently serving as the governor of Sikkim, will be the new governor of Keralam. He will replace the current governor of Keralam, Rajendra Vishwanath Arlekar, who has been appointed as the governor of Tamil Nadu. Mr. Dushyant Gautam has been appointed as the new governor of Sikkim. Besides, the president has appointed Mr. Braj Mohan Ram as the governor of Orissa, Dr. Sudha Yadav as the governor of Karnataka, and Dr. Dhal Singh Bisen as the governor of Uttarakhand. Their appointments will take effect from the dates on which they assume charge of their respective offices. India will host first ever BIMSTEC Home Ministers meeting in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah will chair the high-level meeting. The meeting underscores the shared resolve to combat terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. We have a report.
4: Extending a warm welcome to all the participating home ministers and member state delegations, Union Home Minister Amit Shah said that the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC members to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism and organized crime. In a social media post, Mr. Shah said that through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Way of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation BIMS

वर्षाइके मि चु एन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलं आसन आसन कपचे थांग वर्षाइदो लबांग सुवांग बंग माइ मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपु हेम की मिकांगपु चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलं नंग हुमरी इक्तमी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आपने सुना चांद का टुकड़ा इस फिल्म का ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया महेश किशोर ने। साथियों आपको बता दें कि आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे किशोर कुमार की अलग अलग अदाओं में गायकी के कुछ गीत। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे यानी कि विविध भारती के साथ।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: मेरी चूनर उड़ उड़ जाए इस एल्बम का गीत सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में गीत और संगीत ललित सेन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं जय बजरंगबली इस एल्बम का ये भजन, शबाब सबरी की आवाज। मनीष व्यास ने इसे लिखा है, अभिजीत गढ़वे का संगीत।

इस भजन के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है ललित का और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे इस धुन को सुनकर कि आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं। साथियों, किशोर कुमार एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल में संगीत की लहरें उठने लगती हैं। कभी उनकी आवाज हमें हंसाती है, कभी प्यार के खूबसूरत एहसासों में ले जाती है, तो कभी आंखें नम कर देती है और कभी ऐसा सुकून भी देती है जैसे भागदौड़ की जिंदगी में कुछ पल ठहरने का बहाना मिल गया हो। आज का ये सफर किशोरदा के इन्हीं अलग अलग रंगों के नाम है। तो आइए सुरों के इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं नमक हलाल फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार और साथियों की। इस गीत को लिखा है प्रकाश मेहरा ने और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल

0: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में मस्ती भरे गीतों के साथ। साथियों, किशोरदा की आवाज में एक ऐसी शरारत थी जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। उनके गानों में कभी बेफिक्री, कभी नटखटपन, तो कभी ऐसी मस्ती होती थी कि पैर अपने आप थिरकने लगे। तो चलिए जिंदगी की फिक्रों को कुछ देर किनारे रखकर माहौल को थोड़ा मस्ती भरा बनाते हैं और आइए सुनते हैं डॉन फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की, अनजान की रचना और धुन बनाई आनंद जी कल्याण जी ने।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

कटी पतंग फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाज किशोर कुमार की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना, इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

साथियों, प्यार के एहसास को शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन किशोरदा ने अपनी आवाज से इसे बेहद खूबसूरत बना दिया। कभी पहली मोहब्बत की झिझक, कभी किसी का इंतजार, तो कभी दिल की अनकही बातें, उनके रोमांटिक गीत हर एहसास को अपना सा बना देते हैं।

0: दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर कहानी का अंत खुशियों से हो ये जरूरी नहीं। किशोरदा ने अपनी आवाज में बिछड़ने की कसक, अधूरी मोहब्बत और तन्हाई के दर्द को कुछ इस तरह पिरोया कि हर गीत दिल की कहानी लगने लगता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ नगमे जो अनगहे जज्बातों को आवाज देते हैं।

अमर प्रेम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज किशोर कुमार की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमानुष फिल्म का गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। इंदिवर की रचना है ये और श्यामल मित्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

गांधी फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गुलजार ने इसे शब्दबद्ध किया है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर बस आंखें बंद करने और उनमें खो जाने का मन करता है। किशोरदा की आवाज में एक ऐसा अपनापन और ठहराव था जो मन की हलचल को धीमा कर देता है। तो आइए अब सुनते हैं ये ऐसा ही एक गीत जो दिल को सुकून और मन को राहत देता है। घर फिल्म का ये गीत है, आवाज किशोर कुमार की, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

साथियों, आज के इस संगीतमय सफर में हमने किशोर कुमार की आवाज के कई रंग महसूस किए। कहीं मस्ती थी, कहीं मोहब्बत, कहीं दर्द और कहीं दिल को छू लेने वाला सुकून। यही तो खासियत थी किशोरदा की। वे हर एहसास को अपना बना लेते थे और फिर उसे हमारे दिलों तक पहुंचा देते थे। उनकी आवाज आज हमारे बीच भले ही पहले की तरह मौजूद ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। किशोरदा को सुरों भरा नमन। और आज के इस कार्यक्रम से अब नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार करें नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज का दिन हिंदी सिनेमा की दो अनमोल शख्सियतों की याद दिलाता है। आज अशोक कुमार जी की जयंती है, जिन्होंने अपने सहज अभिनय से भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। वहीं किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि हमें उनकी आवाज के उस जादू की याद दिलाती है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। इन्हीं यादों के साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो कभी पटरियों पर दौड़ता है तो कभी जिंदगी के रास्तों पर चलता है। साथियों, इबारत आपने फेसबुक पर पढ़ी ली होगी और हमारे सभी श्रोता साथी फेसबुक पर हमसे कमेंट्स द्वारा जुड़ भी गए होंगे। यदि कोई छूट गया है तो आइए उनके लिए एक बार इबारत फिर पढ़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी भी एक रेलगाड़ी के सफर जैसी है, जहां कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ रास्ते में मिलते हैं और कुछ किसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। कभी सफर सुहाना होता है तो कभी मुश्किलों की सुरंगें सामने आती हैं, लेकिन जैसे हर सुरंग के बाद रोशनी आती है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद उम्मीद की किरण जरूर आती है। हम अक्सर मंजिल की चिंता में सफर का आनंद लेना भूल जाते हैं। याद रखिए, हर मुसाफिर की मंजिल अलग हो सकती है, लेकिन सफर में मिली यादें हमेशा साथ रहती हैं। इसलिए जिंदगी की इस रेलगाड़ी में मंजिल तक पहुंचने की जल्दी मत कीजिए, सफर को भी मुस्कुराकर जीना सीखिए, क्योंकि खूबसूरत यादें अक्सर रास्तों में ही बनती हैं। और आइए इसी के साथ सुनते हैं ये इस कार्यक्रम का आज का पहला गीत, अशोक कुमार की आवाज में। आशीर्वाद फिल्म से ये गीत है, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत।
1: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर, रेडी, एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धड़क धड़क लोहे की सड़क धड़क धड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान।

बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल नदी गोल नदी गोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

तो आप सभी ने इस गीत में आया हुआ वो शब्द तो पहचान ही लिया होगा। जी हाँ, वो शब्द है रेलगाड़ी। अशोक कुमार का गाया ये गीत था। एक साथी ने लिखा है, आज ट्रेन के सफर की बात है तो जिंदगी हमेशा सफर पर ही रहती है। कभी सुरीला सफर बन जाती है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। आज मैं ट्रेन से नहीं गाड़ी से सफर कर रही हूँ, इसलिए आज प्रोग्राम नहीं सुन पाऊंगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप जिस सफर पर हैं वहां पर हमारा जो विविध भारती है न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप दिन रात लगातार कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, तो आप वहां पर सुन सकती हैं। तो कार्यक्रम को मिस मत कीजिए, इसका आनंद लीजिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। शब्द पहचानिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि इस गीत का वो शब्द कौन सा है। कालिया फिल्म का ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, राहुल देव बर्मन का संगीत।

तो आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है। आज अभी ये जो गीत बजा, इसका शब्द था साथ। एक साथी ने लिखा है, फिल्म आशीर्वाद का प्रसिद्ध गाना रेलगाड़ी भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक और अनोखा गीत है, जिसे दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार यानी कि दादा मुनि ने गाया था। इसे भारतीय सिनेमा का पहला रैप गाना माना जाता है, जिसमें बिना किसी भारी संगीत के रेलवे स्टेशनों के नामों और ग्रामीण भारत की छटा को बेहद लयबद्ध अंदाज में पिरोया गया है। इस मासूम और ऊर्जावान गीत को हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा और वसंत देसाई ने संगीतबद्ध किया, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी ने लिखा है, किशोरदा आप भी तो जिंदगी के इस सफर के ऐसे मुसाफिर हैं जो अपनी देह से भले ही दूर चले गए, मगर अपनी आवाज के रूप में हर दिल में ठहर गए। वक्त की रेलगाड़ी आगे बढ़ती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, कितने ही स्टेशन पीछे छूट गए, लेकिन आपके गीतों का कारवां आज भी उसी शिद्दत से हमारे साथ चल रहा है। आपकी आवाज सुनकर लगता है जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना फिर लौट आया हो, जैसे यादों की किसी पुराने स्टेशन पर जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर गई हो। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत और पहचानिएगा इस गीत का वो कौन सा शब्द है जो हमारी आज की इबारत में शामिल है। फिल्म का नाम है राम बलराम। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। बोल हैं आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना, इससे पहले जो गीत बजा उसमें शब्द था रास्ता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक साथ ही लिखते हैं, सफर बैलगाड़ी का हो या हवाई जहाज का या जिंदगी का, हिचकोले तो लगते ही हैं लेकिन हमेशा तो नहीं, इसलिए सुहाने सफर का आनंद भी लें तो जीवन के झटके भी हंसते हंसते लें। एक साथी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जब हम किसी खूबसूरत सफर पर होते हैं तो ऐसी ऐसी मीठी मधुर और मधुर अनुभूति होती है जिन्हें हम कभी भी भूलना नहीं चाहते। ऐसा

है कि सफर कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सफर पर हमें बहुत अच्छे बातूनी लोग मिल जाते हैं, या फिर हम जैसी सोच रखते हैं उस तरह की सोच रखने वाले लोग मिल जाते हैं, तो बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर सफर कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है ये सफर थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गीत आपको सुनवाते हैं शोले फिल्म से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत, और आपको बताना है इस शब्द में छुपा, क्षमा कीजिए, इस गीत में छुपा वो शब्द।

2026 में जब वंदे भारत ट्रेन में श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से श्रीनगर स्टेशन की ओर वापसी में मेरी धर्मपत्नी और मैंने सफर किया था। बाबा अमरनाथ जी के पवित्र गुफा के दर्शन लिए रास्ते में चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंची ब्रिज से भी ट्रेन गुजर रही थी। कई सुरंगों और ब्रिजेस से ट्रेन गुजर रही थी जिनको देखकर हम भी आनंदित हो रहे थे। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं श्रोताओं जो हमारी जहन में बस जाती हैं, हमें याद हो जाता है पल पल कि कैसे गुजरा था और कितना खूबसूरत था। चलिए इस कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

अंदाज फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। साथियों, एक साथी लिख रहे हैं कि रेलगाड़ी का सफर बेहद रोमांचक, आरामदायक और यादगार अनुभव माना जाता है। खिड़की के पास बैठकर बाहर बदलते नजारे, खेत खलिहान, पहाड़, नदियां और छोटे छोटे स्टेशंस को देखना मन को सुकून देता है। जी हाँ, ये तो एक बड़ा ही खूबसूरत एहसास है जिसे जब तक खुद अनुभव ना किया जाए तब तक उसमें कुछ आनंद ही नहीं है। तो बड़ी अच्छी बात लिखी है आपने। एक साथ ही लिखते हैं, जीवन को समझने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक रेलगाड़ी के सफर से बखूबी समझा जा सकता है। हम सभी इस संसार रूपी स्टेशन पर आते हैं, जीवन की गाड़ी में सवार होते हैं और अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। ये यात्रा केवल एक दूरी तय करना नहीं बल्कि अनुभवों का एक विशाल संग्रह है। और आप सभी ने ये भी बिल्कुल सही पहचाना है, इस गीत में शब्द था सुहाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। शब्द रचना शैलेंद्र की, शंकर जयकिशन की धुन।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: तो इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसमें शब्द था रोशनी। साथियों, एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली नेहा जी और सभी गुणी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। किशोर दा हमारे ही शहर खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मुंबई में उनके निधन के बाद उनकी इच्छानुसार उन्हें खंडवा लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। अब ये तो कहना चाहिए कि एक ऐसा अवसर था जो आप उस शहर के थे और इसलिए इसका आप इसमें शामिल हो सकें, और बड़ी मुश्किल से कभी ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हम किसी ऐसी महान हस्ती की यात्रा में शामिल हो पाते हैं। और किशोर कुमार जी के भी कुछ जो उनके साक्षात्कार हुए, उनकी बातों में हमें कई जगह पता चलता है कि उन्हें अपने शहर खंडवा से बेहद प्रेम था और उनकी हर बात में ये बात झलकती थी कि वे वापस खंडवा आना चाहते थे। आइए अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला कमेंट हमें किया है एक साथी ने, लिखा है मेरा सबसे लंबा सफर था जब बेटे की बारात लेकर कटक से अल्मोड़ा जाना था। राजधानी एक्सप्रेस से कटक से दिल्ली करीब 24 घंटा, फिर 12 घंटे बस द्वारा दिल्ली से अल्मोड़ा। हम 35 बाराती खूब मौज मस्ती करते गए और वापस उसी रास्ते आए। एक साथी ने लिखा है नेहा जी जिंदगी के इस सफर में मेरे बचपन से आज तक जो विश्वसनीय साथी रहा है वो है विविध भारती मुंबई, जिसके प्रोग्राम्स जो मैं रेडियो पर सुनते हुए अपने जीवन के सफर को सुरीला बनाता रहा हूं और आगे भी जितनी सांसें मिली हैं तब तक बनाता रहूंगा। जी हाँ बिल्कुल, तो आप सुनते रहिए विविध भारती। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत तलाक फिल्म से आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजें। प्रदीप ने इसे लिखा है, श्रीराम चंद्र का संगीत। शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।

सभी ने शब्द बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था किरण। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर एक खूबसूरत नदी की तरह है जो कई मोड़ों और उतार चढ़ावों से होकर गुजरती है। इस रास्ते में कई लोग लहरों की तरह मिलते हैं और कुछ यादें बनकर पीछे छूट जाते हैं। कभी मुश्किलें चट्टान बनकर सामने आती हैं तो कभी खुशियों के झरने सुकून देते हैं। हम अक्सर किनारे यानी कि मंजिल तक पहुँचने की जल्दी में बहते पानी के आनंद को भूल जाते हैं। मंजिल तो तय है लेकिन असली सुकून हर पल को मुस्कुराकर जीने और इस सफर में यादें बटोरने में है। आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की। फिल्म का नाम है परिचय, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: मुसाफिर शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और एक साथी ने लिखा है, एक बार रेल से सफर के दौरान हमारे कोच में आग लग गई थी। बाहर से लोग चिल्ला रहे थे कि गेट खोलो। मेरे मामा जी जो मुझे लिवाने आए थे बोले सब अंदर आना चाहते हैं, चुपचाप सो जाओ। इतने में मुझे खिड़की के पास आग की लपटें दिखाई दी। मैंने दौड़कर गेट खोल दिया, सब सुरक्षित बच गए। पर आज भी याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये बात सुनकर तो हमें भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आपकी सूझबूझ ने उस घटना को टाल दिया कह सकते हैं, तो ये सूझबूझ कभी कभार बहुत ज़रूरी होती है। एक साथी ने लिखा है, मुझे तो रेलगाड़ी की यात्रा इतनी अच्छी लगती है कि मैं हवाई यात्रा को छोड़कर रेलगाड़ी की यात्रा करना पसंद करती हूँ। मेरे ऑफिस से मुझे बीकानेर से मुंबई तक का हवाई यात्रा का अवसर मिलता है, लेकिन मैं रेलगाड़ी से ही जाती हूँ, तो सब मेरे कलीग्स और मेरे परिवार वाले मेरी हंसी भी उड़ाते हैं कि हवाई यात्रा छोड़कर आप रेलगाड़ी में जाती हैं। रेलगाड़ी से खिड़की से झांक कर एक एक स्टेशन देखना, धरती से धरती तक का मिलन, धरती से आकाश का क्षितिज पर मिलन, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन से जब भोपाल की तरफ चलते हैं तो ट्रेन बहुत सारी सुरंगों और हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरती है। वो जंगल की छटा बरसात के समय बहुत ही रोमांचक होती है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज, साथ दिया है मोहम्मद रफी ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। पहचानिए शब्द।

याद शब्द आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का सफर बहुत खूबसूरत है, इसमें कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी मुश्किलें हमारा हौसला परखती हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव जिंदगी को जीने का सही मतलब सिखाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं, जिंदगी का ये सफर वाकई बहुत ही अजीब है, बंद मुट्ठी आए थे, खुले हाथ जाना है, जो धन मान सम्मान कमाया वो छोड़कर एक दिन चले जाना है, न साथ लाए थे न साथ आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए हमें जीवन में हमेशा सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमें जो मिला है वो काफ़ी है, यानी कि जितना मिला जैसा मिला वो अच्छा है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।

साथी लिख रहे हैं, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, बस सुरीला सफर का भी थोड़ा सा सफर बाकी है, मगर हम सोच रहे हैं काश सुरीला सफर का सफर और बढ़ जाए। गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो दोस्तों, रेलगाड़ी की तरह जिंदगी का सफर भी चलता रहता है। कुछ यादें और कुछ लोग हमेशा साथ रह जाते हैं। आज किशोर दा और दादा मुनि को याद करते हुए इसी खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। अब दीजिए आज्ञा नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: global uncertainty. Mr. Modi said India's progress is rooted in collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavor is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. He said the power is not just the ability to move ahead, but it is also the ability to empower others. Mr. Modi said in the present era, digital power has emerged as one of the key drivers of this transformation and playing a significant role in advancing this vision. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India.
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है. भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं. करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं. 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं. हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है. अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है. और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर.
0: The Prime Minister said, whenever the world needs a steady pillar, India extends its hand in support, recognizing its responsibility. Mr. Modi said today, India is home to more than 2,000 global capability centers that are providing services to companies across the world. Mr. Modi said, India is the mother of democracy and it has over 100 languages, around 80,000 registered newspapers and publications, and more than 1,000 satellite television channels. Mr. Modi highlighted that India had lifted 25 crore people out of poverty over the past decade.
1: Power ke purpose par jo focus hai, yahi soch governance mein bhi zaruri hai. Sarkar ke paas authority hai, lekin iska uddesh ye nahi hona chahiye ki desh ka nagrik system par hi nirbhar ho jaye, balki iska maqsad ye hona chahiye ki desh ke nagrik saksham ho, सशक्त हो. और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है. इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है.
0: The Prime Minister said India's startup ecosystem has expanded significantly since 2014, with the number of startups crossing 2,50,000.
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते. अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई. करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं. 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है. यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं.
0: India is hosting the first Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC Home Ministers Meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah said, BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. Reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism, the Home Minister called for a collective commitment to ensure that no terrorist network finds space within the region for shelter, recruitment, training, financing or activities against neighboring countries.
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर
3: टेररिस्ट, देयर एसोसिएट्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स, फाइनेंशियल चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज, द टाइमली एक्सचेंज ऑफ वेरीफाइड एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन ऑन दीज कैन स्ट्रेंथन आवर कलेक्टिव सिक्योरिटी. द मिसयूज ऑफ इनफॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांसफर, ट्रेड बेस्ड चैनल्स एंड क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल नेटवर्क्स फर्दर कॉम्प्लिकेट द फ्लो ऑफ इलिसिट प्रोसीड्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, द एक्सचेंज of financial intelligence and investigative expertise can further help us.
2: हमें और मदद रूप हो सकता है.
0: UPI merchant discount rate MDR on select person to merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person to merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. It said the date will be notified

0: डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन ले। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
2: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स

0: कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैनजोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारिल हावलिचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
2: 2014 से केंद्र सरकार ने एक्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए 1 दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत

0: इसके प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
1: असम में, नॉर्थ ईस्ट में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
0: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से ओडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आपने ट्यून किया है अपना सबसे पसंदीदा चैनल, मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और सचिन देव बर्मन का संगीत।
4: बंसिया बजाई, अरे कैसी बंसिया बजाई, श्यामा सुध बिस राई, तरे रे तरे रे तरे रे रे रे,
5: भूल गया यार,
4: तरे रे तरे रे तरे रे रे रे, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया

के बोझ को सर से उतार दे, चिंता के भूत को बंदूक मार दे। क्यों भाई मैंने ठीक कहा, हाँ हाँ तुमने ठीक कहा, अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा।

दुनिया की गाड़ियाँ चलती है झूठ पर, दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर है।

0: दुनिया को मार दे बाटे के बूट पर, क्यों भाई मैंने ठीक कहा।
1: हाँ हाँ तुमने ठीक कहा।
0: अरे तब फिर मैंने ठीक कहा, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा।

0: दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। हाँ, दुनिया के फेर में पढ़ना फजूल है, जिंदगी उसी की है जो कि डैम फूल है। क्यों भाई मैंने ठीक कहा?
1: तुमने बिल्कुल ठीक कहा।
0: ऊंचे

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म उड़न खटोला से, आवाज लता मंगेशकर की थी। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में नई दिल्ली फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र की रचना है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री 420। इस फिल्म का गीत आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की। शैलेंद्र ने इस गीत को रचा है और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: गंगुली यारो
1: की बोले रे
0: मेरा बोटा काज ना फिर बेड़ा पारो
2: मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार को नो मुटारो।
3: सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं एक झलक। मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का गीत गीता दत्त और साथियों की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत ओपी नैयर का।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है मंजरी जी? खूब गरबा दांडिया खेल कर आ रही हैं ऐसा लग रहा है, मतलब रात को।
2: जी बिल्कुल जश्न ही ऐसा है कि त्योहार का समय चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में तो शुरू हो गई है सब जगह पे डांडिया खेलना, गरबा खेलना।
1: और जुनून सा होता है कि बहुत सारी महिलाओं को हमने देखा, अरे हमें तो नहीं आता है और हमें तो पैरों में दिक्कत है, तकलीफ है, हम नहीं करेंगे, लेकिन जब वो
2: ये 9 दिन आते हैं
1: सखियों और सखाओं के साथ वो मैदान में उतरती हैं तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, फिर जुनून छा जाता है, फिर तो समय का भी ख्याल नहीं रहता है। इसका स्वरूप थोड़ा बदल रहा है ना
2: जी,
1: बल्कि जो पहले था गरबा दांडिया का जो स्वरूप डांस का तरीका था, अब उसमें बहुत सारी मिलावट भी हो गई है। तो हमारे श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं, हम चाहते हैं कि वो बताएं अपनी बातें।
2: बिल्कुल, और मुहावरों की दुनिया में अपना उल्लू सीधा करना, इसके बारे में भी हमारे साथियों ने संदेश भेजे हैं और भी बातें करेंगे वो।
1: और मंजरी जी, माँ की अलमारी में बहुत कुछ छिपा होता है ना। हम याद होगा बचपन में कि जब माँ बड़ा सा बक्सा खोलकर बैठती थी तो हम सब घेर के बैठ जाते थे, भाई बहन पूरे परिवार के सदस्य, और देखते थे कि इसमें क्या है। उनके पुराने पुराने कुछ गहने जेवर और कुछ पुरानी चीजें, कुछ छोटा सा पाउच, कुछ पर्स, और उसमें न जाने क्या क्या रहता था, और पुराने कपड़े निकाल के देखना, फिर धूप दिखाना रख के बड़े से चारपाई
2: पे।
1: तो ये सब बड़ी अजीब सी बातें थी और अब जैसे खत्म हो रही है, लेकिन माँ की अलमारी में एक कुछ और भी छुपा होता था।
2: बिल्कुल, उनकी यादें, बहुत सारे एल्बम होते थे, और जो आपने बोला ना पोटली होती थी, दुर्जनिया होती थी, और एक काजल लगाने वाली चांदी की होती थी, लंबी सी डंडी होती
1: चांदी
2: थी,
1: की सुपारी भी होती थी।
2: चांदी की सुपारी,
1: पायल, अंगूठी,
2: बिछिया तो कितनी सारी निकलती थी उसमें, मतलब वो टूटी फूटी भी, साबुत भी,
1: उन्हीं सबके बीच जो छूटा रहता था उनका सपना,
2: बिल्कुल
1: उनका अधूरा सपना, क्योंकि एक जमाना था जब माँ के हिस्से में सिर्फ त्याग और बलिदान आता था, कि वो त्याग की मूर्ति जो होती थी वो माँ सबसे अच्छी माँ कहलाती थी।
2: सही बात
1: है ना कि कितना कुछ सब पूरे परिवार के लिए करना, लेकिन खुद के लिए।
2: आपने बिल्कुल यादों को एकदम ताजा कर दिया है कि हम उस दौर में चले गए, उनके अलमारी तक पहुंच गए।
1: तो आपके साथ साथ, मतलब हम सब के साथ साथ हमारे श्रोता भी यादों की अलमारी खोले और माँ के जो अधूरे सपने, माँ की अलमारी में छिपे उनके अधूरे सपने, इस बारे में हमारे श्रोता टिप्पणी करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: और सखी विशेष में हम बात करने वाले महिला उद्यमी अंकिता गावा के बारे में, जो सोशल समोसा और फिबी की संस्थापक भी हैं। और आज क्योंकि शरदीय नवरात्र का पर्व है तो हमारे सभी साथियों ने बधाइयां भी भेजी हैं, और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, लोग हवन करते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, देवी की आराधना करते हैं और भक्ति में डूब जाते हैं।
1: सुनते हैं ये गीत।

0: नौ दुर्गा फिल्म का गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और खास बात यह है कि ये चित्रगुप्त के स्वर में था। हम संगीतकार के रूप में चित्रगुप्त को जानते हैं, बहुत कम श्रोता जानते हैं कि उन्होंने गाया भी है, तो ये उन्हीं के स्वर में था। रमेश सी पांडे का गीत था और एस एन त्रिपाठी का संगीत था।
1: क्या बात है। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष में महिला उद्यमी अंकिता गाबा के बारे में, और जिसके आज के समय में महिलाएं न केवल स्टार्टअप की शुरुआत कर रही हैं बल्कि कंपनी भी संभाल रही ममता जी, और बल्कि हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देकर उनका नेतृत्व भी कर रही हैं। और आज एक ऐसी महिला की सफलता और मेहनत की कहानी लेकर हम आए हैं, और जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि इससे ज्यादा स्टार्टअप्स की नींव रखी और उन्हें सफल भी बनाया। अंकिता गाबा जो एक इंटरनेट उद्यमी और सफल बिजनेस वुमेन है।
0: ये एक ऐसा नाम है मंजरी जी जिन्हें इंटरनेट उद्यमी का खिताब भी मिल चुका है। उन्होंने सोशल समोसा
1: और सुपर माउस,
0: हाँ, फीवी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नींव रखी। और 4 अप्रैल 1985 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी अंकिता गाबा बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आया करती थी। वे अपने जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने विल्सन कॉलेज मुंबई से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया, और बाद में उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री भी हासिल की।
1: बिल्कुल। और पढ़ाई के दौरान ही साल 2007 में अंकिता गाबा ने भारतीय सोशल मीडिया एजेंसी सुपर माउस की नींव रखी, जिसके बाद साल 2010 तक इसके CEO के तौर पर काम किया। इसके साथ ही अंकिता ने साल 2008 में इंडस्ट्री में भी करियर की शुरुआत की, और उन्होंने टी सीरीज के साथ ही कई प्रसिद्ध हस्तियों के लिए PR मैनेजमेंट का काम भी किया इन्होंने।
0: और 2011 में उन्होंने अन्य संस्थापकों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल समोसा की नींव रखी। इस पोर्टल पर सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, और ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया, विज्ञापन, मार्केटिंग अभियानों और केस स्टडीज से जुड़े आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं।
1: और साल 2015 में इस पोर्टल को प्राइवेट इन्वेस्टर नाम की कंपनी को बेच दिया गया था। इस समय तक ये कंपनी 3 से 4 करोड़ की लगभग बन चुकी थी, और इसके बाद साल 2015 में गेट जेलाइज की को फाउंडर बनी, और एक साल बाद उन्होंने 2016 में आइजेनेरियो में पार्टनर एंड बिजनेस हेड के रूप में भी काम की शुरुआत की। यहां लगभग 2 साल तक काम करने के बाद ओरो वेल्थ में मार्केटिंग डिपार्टमेंट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, और इसके बाद मनी फ्रंट की मार्केटिंग हेड और महिला बनी। वेबसाइट की कंटेंट एंड कम्युनिटी हेड के रूप में भी आपने काम किया।
0: और 2023 में अंकिता गाबा ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर फिवी की स्थापना की। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़ी खबरें दी जाती हैं। इस पोर्टल को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जो प्रभावित होते हैं उन्हें समर्पित किया गया है।
1: जी, और आज अंकिता गाबा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ कर दम पर एक नहीं बल्कि कई स्टार्टअप की शुरुआत करके उन्होंने उसे सफल बनाया। और अंकिता गाबा के पुरस्कार उपलब्धियों की बात करें तो सोशल समोस

0: वेबसाइट को वेब समिट 2013 के टॉप 10 स्टार्टअप में जगह मिल चुकी है और एक्सचेंज चार मीडिया द्वारा IDMA 2013 के लिए सोशल समोसा को टॉप 5 डिजिटल स्टार्टअप में शामिल किया गया है और इसके साथ ही 2013 में उन्हें सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है
1: और वैश्विक शीर्ष 100 सोशल मीडिया एजेंसियां और सलाहकार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और अंकिता गाबा सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपने एक्सपीरियंस और नए नए आइडियाज साझा करती हैं और केवल स्टार्टअप्स की ही शुरुआत नहीं की बल्कि कई लोगों को वो नौकरी भी दे चुकी हैं इसके माध्यम से। उनकी सफलता ये सीख देती है कि एक छोटा सा इनोवेटिव आइडिया के दम पर कैसे बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आज अंकिता गाबा कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं और अब सुनवाते हैं एक गाना।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: मंजरी जी, ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और ये संदेश हमने सुनवाए अपने अपने श्रोताओं को, और हमने अपने श्रोताओं से कहा था कि गरबा और दाढ़िया का स्वरूप बदल रहा है, तो उसमें अपने उद्गार लिखे। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गरबा दाढ़िया के बदलते रूप में इतना ही कहना है कि घर मोहल्ले के चौराहे से पारंपरिक भक्ति अनुष्ठान से निकलकर अब कमर्शियल ग्लोबल रूप ले चुका है, जिसमें भक्ति भाव कम है और टिकट इट ज्यादा होता है।
4: बिल्कुल सही बात लिखी है, क्योंकि जब हम जाते हैं देखने तो वहां पर बहुत ज्यादा पैसे उसके टिकट के बढ़ा दिए गए, और साथ साथ वेशभूषाओं पर भी बहुत सारा खर्चा होता है। देखा जाए बाजार में भरे पड़े हैं सामान और लोग खरीद भी रहे हैं, ऐसा नहीं, तो खर्चा भी बहुत तेजी
3: और
4: से होता है।
3: दोस्ती भी यहाँ पर बहुत परवान चढ़ती है, खास तौर से उसमें कई बार गलत रिश्ते भी पनप जाते हैं।
4: बिल्कुल,
3: लड़के लड़कियों के बीच, कम उम्र के लड़के कम उम्र की लड़कियों को, जहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सही का फर्क नहीं पता होता है, उनके बीच एक रिश्ता एक नाता तय होता है, तो वो रात भर गरबा के बहाने निकल के बाहर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, वो भी ठीक नहीं है।
4: बिल्कुल, उससे वो गलत ही प्रभाव पड़ता है, बाद में पता चलता है कि दोस्ती हुई और बाद में दोस्ती में दरारें आ रही, तो ये सब चीजें बहुत हो रही हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि पहले के जमाने में गरबा गांव के मैदान में एक ही जगह सब मिलकर करते थे, अब तो हर जगह होने लगा है। पहले कम आवाज होता था, अब बड़े बड़े स्पीकर आ गए और शांति सुकून तो गायब ही हो गए। पहले चनिया चोली और केडियो ड्रेस थे, अब वो ड्रेस तो है पर साथ में अंग प्रदर्शन भी होने लगा है। कुल मिला के पहले जो भक्ति भाव था वो अब मतलब कहना चाहिए अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीजें पहनने में दिखावे में हो गई हैं। और मेरी बात करूं तो पहले मैं भी गरबा करने जाता था, पर अब सिर्फ देखता हूं, गरबा करने का मन नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि आज के फैशन के दौर में इतनी चीजें निकल आई हैं, डिजाइनर चीजें आ गई हैं, कपड़े आ गए, तो लड़कियां उसकी तरफ भागी जा रही हैं।
3: पूरा बाजार भरा होता है।
4: बिल्कुल,
3: इस समय बाजार में जाए तो वही लहंगा, चानिया चोली और घाघरा मिलता है, और जैसे होड़ सी मची हुई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा पहन लें।
4: बिल्कुल,
3: और रंगों के हिसाब से जो कपड़े पहने जाते हैं उसमें लोगों को और दिक्कतें आती है कि वो एक दिन पहना गया और फिर अगले गरबा में ही काम आता है, तब तक पता चला कि आप शहर छोड़ चुके होते हैं, आपका करियर बन चुका, वगैरह वगैरह।
4: और बहुत

0: सारी ऐसी ज्वेलरी भी मिल रही है जो सिल्वर कोटेड होती हैं, नकली ज्वेलरी जो है, लेकिन उसको पहनने से कई बार इन्फेक्शन का भी वो हो जाता है, लेकिन फैशन है, पहनना है तो सब पहनते हैं।
1: इसका जो उद्देश्य है मौज मस्ती
0: जी
1: और एक दूसरे से मेल मुलाकात, एक दूसरे से स्नेह प्रेम का रिश्ता वो बना रहे, बस
0: बिल्कुल,
1: ये उद्देश्य होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि होली और दिवाली के अलावा जो पर्व सिनेमाई संगीत में सबसे अव्वल नंबर पर है वो है गरबा। हालांकि मैंने आज तक गरबा नहीं खेला, मगर अपने आसपास के माहौल को देखती हूं तो लगता है कि गरबा के साथ जिंदगी की रंगत कुछ और ही हो गई है। गरबा बस गीतों के सहारे धूम धड़ाका ही रह गया है। जीवन में आने वाले खुशी के छोटे छोटे पल को उत्सव में बदल देने की यह परंपरा बहुत पुरानी है। यह हमें ऐसी दुनिया में खो जाने का मौका देता है जहां खुशियां होती हैं और अपनों के साथ। गरबा नृत्य में हावी होता रिमिक्स कल्चर जीवन शैली में बदलाव की वजह से महज शोर और दिखावा ज्यादा है। अब तो उसमें बाकायदा भांगड़ा, पॉप, सब कुछ
0: सब चीज मिक्स हो गया है, बिल्कुल,
1: और बहुत तेज संगीत। अब तो जो प्रतिबंध है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बंद कर देना है, लोग उसका भी उल्लंघन करते हैं, तो ये नियमों का उल्लंघन कम से कम ना करें
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, गरबा और डांडिया का ये बदलता स्वरूप ये साबित करता है कि हमारी संस्कृति आधुनिक समय के साथ खुद को ढालने में सक्षम है। हालांकि आधुनिकता की चकाचौंध में हमें अपनी मूल परंपराओं और जड़ों को नहीं भूलना चाहिए ताकि इस पवित्र उत्सव की असल आत्मा हमेशा जीवित रहे। बिल्कुल सही बात लिखी है, हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हम सुनते हैं एक गीत।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। मंजरी जी कहाँ गुम हो गई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर ढूंढ रही टिप्पणियां। एक अच्छी खबर सुनिए,
1: बिल्कुल बताइए।
0: वो ये कि एक महिला को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है। वो महिला है नवनीतम नवी पिल्ले। ये भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी जज और यूएन मानवाधिकार की प्रमुख रही हैं। इन्हें मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। मतलब मिला क्या, चुना गया है अभी, और वो तो बाकायदा घोषित हुआ है और जब ये सम्मानित किया जाएगा आगे चलकर
1: जी। और उन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आवाज उठाई, प्रयास किया। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत करने की ओर प्रयास किया, इसके लिए आप सम्मानित की गई।
0: और इसकी इनके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे दें। 1890 के दशक में नबी के ग्रैंड पेरेंट्स बंधुआ मजदूर के रूप में गन्ने के खेतों में काम किया करते थे। मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरह की थी। दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1941 को डरबन में इनका जन्म हुआ और पिता बस चलाते थे, यानी बस के ड्राइवर थे। उनका बचपन बहुत ही संघर्षमय रहा
1: जी। और वे दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला जज बनी। उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से डॉक्टर ऑफ ज्यूरिडिकल साइंस की डिग्री प्राप्त करी। वे रवांडा के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण आईसीटीआर की अध्यक्ष रही। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक

0: न्यायालय आईसीसी की जज भी रही
1: और इन्होंने 2008 से 2014 तक यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रूप में कार्य किया और इनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें हम विविध भारती परिवार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। अब क्या इरादा है,
0: गीत सुन लेते हैं।

0: मंजरी जी, फिर याद है कि माँ की अलमारी में कुछ अधूरे सपने भी छुपे होंगे, कभी टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की आपने?
1: बिल्कुल बहुत की, क्योंकि अक्सर
0: कि
1: जब
0: सिर्फ वो अंगूठी और जेवर लेके पहनने
1: नहीं
0: की
1: नहीं
0: कोशिश
1: नहीं नहीं
0: की?
1: मेरा तो जब वो खोल के, माँ जब बक्सा खोल के बैठती थी तो बस उनकी जो शादी का जो लहंगे की ओढ़नी थी तो वो बस हम बच्चे निकाल लिया करते थे, तो उसको मैं साड़ी की तरह लपेट के घूंघट गाड़ के डोलती थी
0: और माँ की
1: कमरे
0: साड़ी पहनने का
1: में
0: भी एक
1: जी
0: अलग सुख होता
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल
0: कद छोटे होने के कारण माँ की साड़ी आती नहीं थी, तो उसको दोहरा करके
1: दोहरा करके ही
0: या
1: साड़ी
0: फिर खुद लपेट के, साड़ी
1: पहनते
0: पहननी
1: थे
0: नहीं आती
1: जी
0: थी तो लपेट के आईने के सामने देखना, और
1: हाँ
0: अलग अलग रूप रंग में जैसे जैसे माँ तैयार
1: बिल्कुल।
0: होती थी
1: और
0: वैसे वैसे तैयार
1: माथे की
0: होना।
1: बिंदी निकाल के अपनी लगा लेना, ये भी बड़ा शौक होता था
0: तो लेकिन
1: जी
0: उनके सपनों के बारे में, तब जब हम छोटे
1: जी
0: थे तो माँ के सपनों के बारे में सोचने के लिए हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते थे कि
1: नहीं
0: उनके
1: नहीं
0: भीतर, उनके मन में
1: बिल्कुल
0: क्या चल रहा होता है, वो सब के बारे में, पूरे परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन
1: बिल्कुल,
0: उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये हर घर की कहानी है।
1: ये अब जाके हम लोग सोच पाते कि उस समय उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थी अपने चीजों को बताने के, समेटने के लिए। तो
0: बिल्कुल। और वहाँ माँ की अलमारी खुलती है, वहाँ जो उनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें, उनके बहुत सारे अधूरे किस्से छिपे होते थे, वहाँ कपड़े और पुरानी साड़ियों की तह में उनकी खुशबू बसी होती थी, और उनकी जिंदगी के बहुत सारे अधूरे किस्से भी छिपे होते थे जो गाहे बगाहे वो बताया भी करती थी, अपने बचपन की
1: बिल्कुल
0: यादें कि क्या हुआ था उनके बचपन में, उनके लिए कोई स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी तो उन्होंने खुद पढ़ाई की, ऐसी तमाम बातें माँ
1: बिल्कुल
0: के, हम सब के माँ के, और लगभग सबकी माएं एक जैसी होती थी उस समय।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो सारी यादें जुड़ जाती हैं। और उन समय उनकी गोटे वाली साड़ी जब हम लोग देखते थे तो माँ, मतलब माँ का यही होता था कि भाई ये शादी में बनवाई थी, पापा से लड़ाई लड़ करके कितना खर्चा किया था इस पर पापा बोले थे। और अक्सर माँ ये किस्सा बताया करती थी। और अच्छे कपड़ों की वो अलमारी अलग से रखती थी जिससे वो खास मौके पर पहनने का सपना देखा करती थी। तो इस तरह की यादें होती हैं कि, और किसी भी पुराने डिब्बे में बचा कर रखी हुई चिट्ठियां, तस्वीरें या छोटी छोटी चीजें वो माँ उसको दिखाकर अपनी चीजें बताया करती थी कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: अब देखिए ना, हमारे श्रोता भी इन यादों में बिल्कुल खो गए हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि माँ से जुड़ी यादों में एक बहुत ही खूबसूरत याद कि माँ अंतिम दिनों में खूब स्वेटर

0: बुनती थी और बुनकर वो अक्सर उपहार में दे देती थी। अंतिम समय में उनकी सलाइयों पर वर्धमान की पिंक कलर की ऊन का एक स्वेटर था। उसे अधूरे स्वेटर को मैंने करीब 10 साल तक संभाल के रखा। अंततः मेरा मन हुआ कि मैं इसको पूरा करूं और मैंने उस ऊन का इस्तेमाल करके खूब सुंदर सी जैकेट बनाई। और तो हमें एक बात याद है कि जब स्वेटर की बात की है तो ऊन का गोला बनाने के लिए बैठा करती थी माँ और घर की जो अन्य सदस्य होते थे सबको, और हम सबको ऊन का गोला बनाने के लिए थमा दिया जाता था कि आप भी बनाओ, और वो ऊन पूरा उसका एक गुम्फा बन जाता था, संभलता नहीं था
1: और कई बार तो फिसल जाए अगर गोला बना भी रहे तो छोटे छोटे हाथों से फिसल गया तो दूर तक चला गया
0: वो धागा, फिर धागे के पीछे पीछे भागते रहो,
1: फिर मालूम पड़ा उलझा भी देते थे, गांठ पड़ गई, फिर माँ कह रही तुम रहने दो तो, लेकिन
0: और बड़ा मजा आता था। खास तरह की कलाकारी भी होती थी उसमें, तरह तरह के, जैसे एक सुपारी का आकार या फिर संतरे का आकार,
1: नहीं उसको अंगूठे और छंगुनिया में ऐसे करके तिकल्ला नहीं होता है जैसे, उस तरह से वो लपेटा जाता था, तो वो भी छोटे छोटे हाथों में कितना लपटेगा तो वो भी बड़ा मजेदार है।
0: हमारे श्रोता देख नहीं सकते, नहीं तो हम ये जो अभी आपने
1: किया एक्शन किया
0: ये दिखा सकते थे, मंजू जी बाकायदा वो हाथ ऐसे हिला के दिखा रहे हैं।
1: हमारे श्रोता बहुत समझदार है, वो सब जान गए कि तिकल्ला बोला है तो वो समझ गए होंगे। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी में सिर्फ साड़ियां ही नहीं, उसके उनके अधूरे सपने भी तह करके रखे होते थे जो उन्होंने शायद विवाह के पहले खुद के लिए संजोए हों। एक तह में वो लाल जोड़ा जो उन्होंने अपनी विवाह के बाद कभी खुलकर पहना ही नहीं, दूसरी तह में वो किताब जिसे वो पढ़ना चाहती थी पर चूल्हे चौकी की जिम्मेदारियों में वक्त नहीं मिला, और सबसे नीचे दबी वो डिबिया जिसमें मेले से लाई बिंदिया आज भी वैसी की वैसी पड़ी है। उनके अपने सारे रंग हमारे भविष्य को संवारने में घोल दिए और खुद एक फीकी सी साड़ी में सिमट गई। अलमारी खोलो तो आज भी उसमें से ममता के साथ साथ एक अनकही उदासी की महक आती है कि काश किसी दिन हमने पूछा तो होता माँ तुम्हारा सपना क्या था। बहुत ही मतलब दिल भर आया ऐसी बातों को सुन करके।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पुराने जमाने की माँ के लिए अलमारी यानी सिर्फ कपड़ों की या गहनों की राशि, वो तो है उनके त्याग की निशानी और अधूरे सपनों की कहानी, ऐसा हम जरूर कह सकते हैं। सामाजिक वैचारिक अनास्था के कारण खुद की इच्छाएं दबाकर कुटुंब के लिए वो त्याग की मूर्त बन जाती थी, परंतु उन्हीं के ममता भरी सजग छाया में पली आज की आधुनिक माताएं ऐसी नहीं हैं। बड़ी समझदारी से परिवार और बच्चों को संजोते हुए वे खुद के सपने और कर्तव्य पूरी करती नजर आ रही हैं। दरअसल इसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर हम उन परंपराओं से आगे नहीं बढ़ेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है और लड़कियों को खासतौर से आगे बढ़ाना है, उन्हें भी समानता से उनके हक के बारे में सोचना है, तो फिर उन परंपराओं से तो आगे निकलना होगा।
1: बिल्कुल,
0: अब कहने का ये मतलब नहीं है कि माँ की जो अच्छाइयां थी उसको आप हटा के दूर रख दीजिए,
1: जी उनको तो रखना ही अपने पास। और हमारे साथी लिखते हैं कि माँ की अलमारी सिर्फ कपड़ों या कागजों का बक्सा नहीं होती थी, वो उनसे उन अनकहे अधूरी इच्छाओं का संग्रहालय होती थी जिन्हें उसने परिवार की खुशियों के पीछे कहीं छुपा दिया होता है। उसके ये अधूरे सपने किसी मलाल की तरह नहीं होती बल्कि उस त्याग की मिसाल होते हैं जो उसने हंसते हंसते खुद पर ओढ़ लिया। उसने अपनी दुनिया को अपने बच्चों और परिवार की खुशियों के इर्द गिर्द बुन लिया और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को उन परतों में हमेशा के लिए छुपा दिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उनकी, और घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच ना जाने कितनी बार अपने सपनों को वो चुपचाप तह करके रख दिया करती, और बच्चों की खुशी, पति की जरूरतें और घर की जिम्मेदारियां उनके अपने अरमानों से आगे निकलती रहती, और उनकी अलमारी की हर तह जैसे कहती कि मैंने भी कभी अपने लिए कुछ सोचा था। और कभी अगर ममता जी उस अलमारी को ध्यान से खोलिएगा तो देखें माँ के कितने सपने उसमें मिल जाएंगे, और जिसमें उनके कोई कभी शब्द नहीं उन्होंने दिए, और अगर मिल जाए तो उसे पूरा करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि माँ के सपनों को उम्र नहीं बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। और कई बार होता है कि जब उनकी अलमारी देखो तो उसमें बहुत सारे रुमाल दिख जाते हैं तह रख के, उनकी कढ़ाई के धागे दिख जाएंगे, सुई का डब्बा दिख जाएगा, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें माँ की उस अलमारी में दिख जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और उनके उसके साथ साथ कुछ कागजों के बीच रसीद भी मिल जाती है जो चीज़ें उन्होंने उस समय खरीदी होंगी वो भी दबी पड़ी हैं, कुछ पन्ने फट गए उनके रसीदों के, लेकिन फिर भी उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। और इसके साथ साथ अपने बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े, झबले, टोपी, मोजा, ये सब भी उनकी

0: अलमारी में खूब दिख जाता है। और जब क्या कहते हैं कि उनकी तस्वीर का जो एक पोटली होती है या एल्बम होता है, उसमें भी ना जाने कितने समय के लोगों के परिवार के सदस्यों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं, तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कितना संभाल के उन्होंने उस जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रखा हुआ है।
1: और वो प्रिंट करने का जमाना भी था कि प्रिंट करवा के सहेज के रखा भी जाता था, कहीं एल्बम में लगाया जाता था या लिफाफे में करके। अब एक गाना सुन लेते हैं और बातें करते हैं।

वर्षाकी मि चुएन्दुनिक्था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थांग वर्षाइदो लबांग सुंग बंग माइ मीटिंग पांगरी पांगदन महांगे थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपु हेम की मिकांगपु चुजुन चमांकान रंग केयर आरंगजे बिहु क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: हिथी रुयाफि लंकिरी दिफु गप कले सलों आमेन चे थाप लंग चिलो आ निंगे हांगे साइंस सी का चार्ली कांगतु बनता तंकालाम दो ककमासी का निंगे पाफी हाई हेदरलो लासी आर्ट सी चार्ली दुन रंगलो पुसन सी लंकिरी के कले सलों का चार्ली दुन आर निशीता पदाक दे पेनलो आपुनु लुमजोंला पेना पिनुता काचार्ली थेक नांगजी पुसी काइकेता केथान के पारे लोकलो आहुता दाक्सी हेमालों साय आमु पाक्लेम चोचलो आपुनु बांग लोंकिरिया फान आलांग कलेज काचार्ली दुनाहुत बांग हेम बोहा के दोदुन किसुं आलाम चेथानलो
1: आसाय जोग जेसी सरकार आलों ताबोरें आसाय काचों दादु नांगलो सेता नांगके नेदो कोकलो अपत लोले चार्ली दुन पामेनन आहोदा दाक पेनले

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से ये तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी, सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानूनी सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच तथा संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
0: डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इंकार इस स्थापित तथ्य को बदल नहीं सकता है।
2: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावलीचेक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चेक गणराज्य के बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: इंडिया एंड चेक रिपब्लिक,
4: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा संवाद में श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थों की लत की चपेट में आ जाता है, वहां पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है।
2: जो भी समाज नशे की गिरफ्त में आता है, वहाँ एक पूरी पीढ़ी के बर्बाद होने का खतरा पैदा हो जाता है। अगर हम अपने समाज को नशे से मुक्त करने में सफल नहीं होते, तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती होगी।
1: प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मास्टर प्लान की शुरुआत वर्ष 2021 में आज ही के दिन देश के बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से की गई थी।
5: पिछले 5 वर्षों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत डिजिटल नियोजन मंच से विकसित होकर एक व्यापक भूस्थानिक नियोजन प्रणाली बन गया है, जो अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के विकास में सहयोग कर रहा है। इसने जीआईएस आधारित मंच के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों और अवसंरचना नेटवर्क को एक साथ जोड़ा है। आज पीएम गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1800 से अधिक डेटा लेयर एकीकृत हैं, जिनमें 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के आधार पर इस मंच पर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 400 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि जीएसटी परिषद जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे अमल में लाया जा रहा है।
6: 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी देश में कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई करों को एक ही कर व्यवस्था में शामिल किया गया। इससे एक देश एक कर की अवधारणा को बढ़ावा मिला। जीएसटी परिषद के प्रस्तावों का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक आसान, पारदर्शी और करदाताओं के अनुकूल बनाना है। पिछले साल जीएसटी में किए गए नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने 4 कर दरों 5, 12, 18 और 28% की जगह अब केवल 2 मुख्य दरें

0: 5 और 18% कर दी गई है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से सरकार ने करों की जटिल व्यवस्था को आसान कर दिया है।
1: जीएसटी के जरिए हमने टैक्सेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब को नेशनल मार्केट में बदला है। बिजनेस से जुड़े सैकड़ों छोटी मोटी गलतियों को डिक्रिमिनलाइज किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
0: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के

0: किया गया है और भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 58वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि परिषद ने जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की सिफारिश की है।
2: परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत गिरफ्तारी के अधिकार को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके अलावा परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने का भी सुझाव दिया है। इसका मतलब है कि 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के मामलों में अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।
1: 9 वर्षों में कर प्रक्रिया को आसान बनाने और कर दरों में बदलाव से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को भी मजबूती मिली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार ने इलेक्शन कमीशन को स्वावलंबी तरीके से देशहित और जनहित में अपने काम करने के लिए पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दी है, और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट हुआ हो उसको कोई राजनीतिक लाभ कभी भी देने का प्रयास नहीं किया।
3: UPI पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपए से अधिक के लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPA ने बताया कि UPI और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच सभी UPI लेन देन निःशुल्क रहेंगे। MDR शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के ग्राहक से व्यापारी के बीच लेन देन पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी श्रेणी के अंतर्गत UPI QR कोड के माध्यम से प्रति माह 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों और रेहड़ी पटरी वालों को पहले की तरह लेन देन पर कोई MDR शुल्क नहीं देना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार आज 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,109 अंक चढ़कर 73,034 पर पहुंच गया। निफ्टी 359 अंक का उछाल दर्ज करता हुआ 22,722 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 50 पैसे की मजबूती के साथ 95.28 रुपए पर बंद हुआ।
3: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने प्रागवे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 23 वर्षीय स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में तीसरा स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने मंत्रिपरिषद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। भारत ने दोहराया, लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इंकार से यह तथ्य नहीं बदलेगा। व्यक्ति से व्यापारी चुनिंदा लेन देन पर UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट दिवाली के बाद लागू होगा। घरेलू शेयर बाजारों में 1.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 73,034 पर हुआ बंद। और आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।